गुरु प्यारी साथ संगत जी हाथ जोड़ के फतेह बुलानी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। संत संघर सिमरना मल जन्म जन्म की काट सो वाहेगुरु की कृपा नाल सानू संगती रूप विच सिमरन करन दा मौका बख्शिया। सो आओ सारे ने पूरा लाहा लैना गाविया सुनिया मन रखिया भाओ रसना ना गुरमंत्र जपना वाहे गुरु कन्ना नाल मन ने पूरी पूरे ध्यान नाल आप दी आवाज विच ध्यान रखना। सो आओ कोई भी रसना वांझी ना रवे।

दर्शन प्यासे दिनस रात चितवाओ अन दिन नीत खोल कपट गुर मिलिया नानक हर संग मीत दर्शन देख जीवा गुर तेरा पूरन कर्म हुए प्रभ मेरा एह बेनंती सुन प्रभ मेरे देह नाम कर अपने चेरे सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुबाए दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख होवै सिफत खसाम दी नूर अरसहो कुरसहो चटिया तुद डिठे सच्चे पाते सा मल जन्म जन्म दी सज्जन सच्चा पाते साह सिर साहांद जिस पास बैठिया सोही है सबना दावे सतनाम वाहे गुरु साहिब जी सोरठ महला पंजवा जित पार ब्रह्म चित आया सो घर दइए वसाया जित पार ब्रह्म चित आया सो घर दइए वसाया सुख सागर गुर पाया ता सहसा सगल मिटाया हर के नाम की वड्याई

साहिब जी, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाओ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सै भंग गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच ना होवई जे सोची लख वार चुपै चुप ना होवई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरिया भार सहस सियान पा लख होहे ता एक ना चलै नाल केव सचियारा होई है केव कूड़ै तुटै पाल हुकम रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहया जाई हुक्मी होवन जीया हुक्म मिलै वड्याई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाईया है इक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाईया है हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए नानक हुक्मै जे बुझै ता हउमै कहै ना कोए गावै को तान होवै किसै तान गावै को दात जानै निशान गावै को गुण वडियाईया चार गावै को विद्या विखम विचार गावै को साज करे तन खेह गावै को जी लै फिर देह गावै को जापै दिसै दूर गावै को वेखै हादरा हदूर कथना कथी न आवै तोट कथ कथ कथी कोटि कोट कोट देदा दे लै दे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राहु नानक विगसै वे परवाहु साचा साहिब साच नाए भाख्या भाव अपार आखह मंगह देह देह दात करे दातार फेर के अगै रखिया जित दिसै दरबार मुहाओ के बोलन बोलिया जित सुन धरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक एवै जानिया सब आपे सचियार थापिया ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गाविया गुनी निदान गाविया सुनिया मन रखिया भाओ दुख पर हर सुख घर लै जाए गुरमुख नादंग गुरमुख वेदंग गुरमुख रहया समाई गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हाओ जाना आखा नाही कहना कथन ना जाई गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई तीरथ नावा जे तिस भावा विन भाने के नाए करी जेती सिरठ उपाई वेखा विन करमा के मिलै लई मत विच रतन जवाहर मानिक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई जे जोग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जानिया नाल चलै सब कोए चंगा नावर खाए कै जस कीरत जग ले जे तिस नदर ना आवई ता वात ना पुछै के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोस धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे
तेहा कोई ना सुजई जे ते सुगुण कोय करे। सुनिया सिद्ध पीर सुर नाथ सुनिया धरत धवल आकाश सुनिया दीप लू पाताल सुनिया पोहे न सकै काल। नानक भगता सदा विगास सुनिया दुख पाप का नास। सुनिया ईसर ब्रह्मा इंद सुनिया मुख साला हनुमंद। सुनिया जोग जुगत तान भेद सुनिया सासत सिमृत वेद। नानक भगता सदा विगास सुनिया दुख पाप का नास। सुनिया सत संतोख ज्ञान सुनिया अठ सठ का इसनान। सुनिया पढ़ पढ़ पावह मान सुनिया लागै सहज ध्यान। नानक भगता सदा विगास सुनिया दुख पाप का नास। सुनिया सरा गुणा के गाह सुनिया सेख पीर पात साह। सुनिया अंधे पाव है राह सुनिया हाथ हुवै असगाह। नानक भगता सदा विगास सुनिया दुख पाप का नास। मन्ने की गात कही ना जाए जे को कहै पिछै पछुताए। कागद कलम ना लिखन हार मन्ने का बह करन विचार। ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए। मन्नै सुरत होवै मन बुद्ध मन्नै सगल भवन की सुध। मन्नै मुहे चोटा ना खाए मन्नै जाम कै साथ ना जाए। ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए। मन्नै मार्ग ठाक ना पाए मन्नै पत से प्रगट जाए। मन्नै मग ना चलै पंथ मन्नै धर्म से तीसन बंध। ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए। मन्नै पावह मोख द्वार मन्नै परवार साधार। मन्नै तरै तारे गुर सिख मन्नै नानक भवह न भिख। ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए। पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावह दरगह मान। पंचे सोह है दार राजान पंचा का गुर एक त्यान। जे को कहै करै विचार करते कै करनै नाही सुमार। धौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत। जे को बुझै होवै सचियार धवलै उपर किता भार। धरती होर परै होर होर तिस्ते भार तलै कवन जोर। जी जात रंगा के नाव सबना लिखिया बुढ़ी कलाम। एहो लेखा लिख जाने कोए लेखा लिखिया केता होए। केता तान सुवाले हो रूप केती दात जाने कौन कूत। कीता पसाओ एको कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ। कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार। जो तुद भावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार। असंख जप असंख भाओ असंख पूजा असंख तप ताओ। असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह है उदास। असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार। असंख सूर मोह पख सार असंख मोन लिव लाए तार। कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार। जो तुद भावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूरख अंध घोर असंख चोर हराम खोर। असंख अमर कर जाहे जोर असंख गाल वड हत्या कमाहे। असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे। असंख मलेच माल पख खाहे असंख निंदक सिर करहै भार। नानक नीच कहै विचार वारिया ना जावा एक वार। जो तुद भावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार।
असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लोह असंख कह है सिर भार होए अखरी नाम अखरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सिर संजोग वखान जिन एह लिखे तिस सिर नाहे जिव फुरमाए तिव तिव पाहे जेता कीता तेता नाओ विन नावै नाही को थाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार भरिया हाथ पैर तन देह पानी धोतै उत्तर सो खेह मूत पलीते कपड़ होए दे साबून लईऐ ओह धोए भरिया मत पापा कै संग ओह धोपै नावै कै रंग पुन्नी पापी आखन नाहे कर कर करना लिख लै जाहो आपे बीज आपे ही खाहो नानक हुक्मी आवहु जाहो तीरथ तप दया दत दान जे को पावै तिल का मान सुनिया मन्या मन कीता भाओ अंतरगत तीरथ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए वेन गुण कीते भगत ना होए स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ सत सुहान सदा मन चाओ कवन सो वेला वक्त कवन कवन थित कवन वार कवन से रुति माहो कवन जित हुआ आकार वेल ना पाया पंडती जे होवै लेख पुराण वक्त ना पायो कादिया जे लिखन लेख कुरान थित वार ना जोगी जानै रुत माहो ना कोई जा करता सिर ठीकाओ साजे आपे जाने सोई केव कर आखा केव सालाही क्यों वरनी केव जाना नानक आखन सब को आखै एक दू एक सियाना वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जा का हुवै नानक जे को आपाओ जाने अगै गया ना सो है पाताला पाताल लख आगासा आगास ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन एक बात सहस अठारह कहन कतेबा असलू एक तात लेखा होए ता लिखिया लेखा होए विनास नानक वड्डा आखिया आपे जाने आप सालाही सालाही एति सुरत ना पाईया नदिया अतै वाह पव है समुंद ना जानिया है समुंद साह सुल्तान गिरहा सेती माल धन कीड़ी तुल ना होवनी जे तिस मन हो ना विसर है अंत ना सिफती कहन ना अंत अंत ना करना देन ना अंत अंत ना वेखन सुनन ना अंत अंत ना जापै क्या मन मंत अंत ना जापै कीता आकार अंत ना जापै पारावार अंत कारण केते बिल लाहे ताके अंत ना पाए जाहे एहो अंत ना जाने कोए बहुता कहिया बहुता होए वड्डा साहिब ऊचा थाओ ऊचे उपर ऊचा नाओ एवड ऊचा होवै कोए तिस ऊचे कौ जाने सोए जेवड आप जाने आप आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता तिल ना तमाए केते मंगा है जोध अपार केते आ गणत नहीं विचार केते खाप तुट है वेकार केते लै लै मुकर पाहे केते मूर्ख खाही खाहे केते आ दुख भूख साध मार एह पे दात तेरी दातार बंद खलासी भाण होए होर आख ना सकै कोए जे को खाए क आखन पाए ओह जाने जेतिया मोहे खाए आपे जाने आपे दे आख है से पे केई के जिसनो बख्से सिफत सालाह नानक पात साही पात साह अमुल गुण अमुल वापार अमुल वापारिये अमुल भंडार अमुल आवह अमुल लै जाहे
अमुल पाए अमुला समाहे अमुल धर्म अमुल दीबान अमुल तुल अमुल परवान अमुल बख्शीस अमुल निशान अमुल कर्म अमुल फुरमान अमुलो अमुल आख्या ना जाए आख आख रहे लिव लाए आख है वेद पाठ पुराण आख है पढ़े कर है वखयान आख है ब्रह्मे आख है इंद आख है गोपीता गोविंद आख है ईसर आख है सिद्ध आख है केते कीते बुद्ध आख है दानव आख है देव आख है सुर नर मुन जन सेव केते आख है आखन पाहे केते कह कह उठ उठ जाहे एते कीते होर करे हे ता आख ना सकह केई के जेवड भावै तेवड होए नानक जाने साचा सोए जे को आख है बोल वे गाड़ ता लिखिया सिर गावारा गावार सो दार के हा सो घर के हा जित बह सर्ब समाले वाजे नाद अनेक असंखा केते वावन हारे केते राग परी स्यो कहियन केते गावन हारे गावह तुहन पौन पानी बैसंतर गावह राजा धर्म दुवारे गावह चित गुप्त लिख जान है लिख लिख धर्म विचारे गावह ईसर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे गावह इंद इदासन बैठे देवते आदार नाले गावह सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावह वीर करारे गावन पंडित पढ़ नर खीसर जुग जुग वेदा नाले गावह मोहनिया मन मोहन सुरगा मछ पयाले गावन रतन उपाय तेरे अठ सठ तीरथ नाले गावह जोध महाबाल सूरा गावह खानी चारे गावह खंड मंडल वर भंडाकार कर रखे तारे सेई तुद नो गावह जो तुद भावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाय ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिन सी माया जिन उपाई कर कर वेखै कीता अपना जिव तिस दी वडियाई जो तिस भावै सोई करसी हुकम ना करना जाई सो पात साहु साहा पात साहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख सरम पत झोली ध्यान की कर है बेभूत खिंथा काल कुवारी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीता जग जीत आदेश तिसै आदेश आदि अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजह नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद्ध सिद्ध अवरा साध संजोग वेजोग दो एकार चलावह लेखे आवह भाग आदे

अंग आर रेख पेख को कह न सकत केह अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कह जय कोट इंदर इंदरान साहे साहान गणिजय त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिन कहत त्वय सर्ब नाम कथय कवन कर्म नाम बरनत सुमत पुजंग पर्यात छंद नमस्तवं अकाले नमस्तवं कृपाले नमस्तं अरूपे नमस्तं अनूपे नमस्तं अपेखे नमस्तं अलेखे नमस्तं अकाये नमस्तं अजाये नमस्तं अगंजे नमस्तं अपंजे नमस्तं अनामे नमस्तं अठामे नमस्तं अकर्मं नमस्तं अतर्मं नमस्तं अनामं नमस्तं अतामं नमस्तं अजीते नमस्तं अपीते नमस्तं अबाहे नमस्तं अटाहे नमस्तं अनिले नमस्तं अनादे नमस्तं अछेदे नमस्तं अगादे नमस्तं अगंजे नमस्तं अपंजे नमस्तं उदारे नमस्तं अपारे नमस्तं सोएकाय नमस्तं अनेकाय नमस्तं अपूते नमस्तं अजूपे नमस्तं निर्कर्मे नमस्तं निर्परमे नमस्तं निर्देशे नमस्तं निरपेशे नमस्तं निरनामे नमस्तं निरकामे नमस्तं निरताते नमस्तं निरकाते नमस्तं निर्दूते नमस्तं अपूते नमस्तं अलोके नमस्तं अशोके नमस्तं निरतापे नमस्तं अथापे नमस्तं त्रिमाने नमस्तं निदाने नमस्तं अगाहे नमस्तं अबाहे नमस्तं त्रिवर्गे नमस्तं असर्गे नमस्तं परपोगे नमस्तं सोजोगे नमस्तं अरंगे नमस्तं अपंगे नमस्तं अगम्ये नमस्तस्तरम्ये नमस्तं जलाश्रे नमस्तं निराश्रे नमस्तं अजाते नमस्तं अपाते नमस्तं अमजबे नमस्तस्त अजबे नमस्तं अमजबे नमस्तस्त अजबे अदेसं अदेसे नमस्तं अपेसे नमस्तं निरतामे नमस्तं निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वदयाले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभूपे नमो सर्वखापे नमो सर्वथापे नमो सर्वखा नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले नमस्तस्त देवाय नमस्तं अपेवाय नमस्तं अजन्मे नमस्तं सोबन्मे नमो सर्वगौणे नमो सर्वपौणे नमो सर्वरंगे नमो सर्वपंगे नमो कालकाले नमस्तस्त दयाले नमस्तं अबरणे नमस्तं अमरणे नमस्तं जरारं नमस्तं कृतारं नमस्तं जरारं नमस्तं कृतारं नमो सर्वतन्दे नमोस्त अबंदे नमस्तं निरसाके नमस्तं निर्वाके नमस्तं रहीमे नमस्तं करीमे नमस्तं अनन्ते नमस्तं महन्ते नमस्तस्तरागे नमस्तं सुहागे नमो सर्वसुखं नमो सर्वपोखं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्वदयाले नमो सर्वपाले चाचरी छंद त्वय प्रसाद अरूप हैं अनूप हैं अजू हैं अपू हैं अलेख हैं अपेख हैं नाम है अकाम है अतिय है अपेय है अजीत है अपीत है त्रिमान है निदान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अबर्ण है अपूत है अपर्ण है अगंज है अपंज है अचूज है अचंज है अमीक है रफीक है अतंद है अबंद है निर्बूज है असूज है अकाल है अजाल है अल्लाह है अजाह है अनंत है महंत है अलीक है निरसरीक है निर्लंब है असंभ है अगम है अजम है अपूत है अछूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है अजीत है अपीत है
अबाह है, अगाह है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है। पुजंग प्रयात छंद नमो सर्व माने समस्ते निदाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे। नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौने अनंगी अनाथे निरसंगी परमाथे। नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने। नमो निरत निरते नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे परपंगी परमाथे समस्ति बेपूते कलंकं बिना ने कलंकी स्वरूपे। नमो राज राजे स्वरं परम रूपे नमो जोग जोगे स्वरं परम सिद्धे नमो राज राजे स्वरं परम वृद्धे। नमो शस्त्र पाने नमो अस्त्र माने नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेखी अपरमी अपोगी अपुगते। नमो जोग जोगे स्वरं परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सो धर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह साहं नमो भूप भूपे। नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं इसनानं। नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं। सदा सचदानंद सर्वं परणासी अनूपे अरूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा बृद्ध करता अदो उर्द अर्दं अगं ओग हरता। परम परम परमेश्वरं प्रोच्छ पालं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं अछेदी अपेदी अनामं अकामं। समस्तो पराजी समस्तस्त तामं तेरा जोर चाचरी छांद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं पुजंग प्रयात छांद अगादे अबादे अनंदे स्वरूपे नमो सर्व माने समस्ति निदाने। नमस्तवं निरनाथे नमस्तवं परमाथे नमस्तवं अगंजे नमस्तवं अपंजे नमस्तवं अकाले नमस्तवं अपाले। नमो सर्व देशे नमो सर्व पेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो शोक शोखे। नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतं नमो सर्व पीतं। नमो सर्व ज्ञानं नमो परम तानं नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व जंत्रं नमो सर्व दृश्यं नमो सर्व कृसं नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे। नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे। कृपालं स्वरूपे कुकर्मं परणासी सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धं निवासी। चरपट छांद त्वय प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे। अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं तराणं सर्वं पुगता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुआल छंद त्वय प्रसाद आद रूप अनाद मूरत अजोन पुरख अपार सर्व मान त्रिमान देव अपेव आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुन काल जतर ततर विराज ही अवधूत रूप रिसाल। नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग ना रेख आद पुरख उदार मूरत अजोन आद असेख देश और ना भेस जाकर रूप रेख ना राग जतर ततर दिशा विसा होए फैले अनुराग। नाम काम बेहीन पेखत
ताम हूं नह जाहे सर्ब मान सर्बतर मान सदैव मान तताहे एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव भेव ना जान ही जिह बेद और कतेब रूप रंग ना जात पात सो जानई कह जेब तात मात ना जात जाकर जन्म मरन बेहीन चक्कर बकर फिरै चतर चक मान ही पुर तीन लोक चौदह है के बिखै जग जापई जिह जाप आद देव अनाद मूरत थाप्यो सबै जिह थाप परम रूप पुनीत मूरत पूरन पुरख अपार सर्ब बिसव रच्यो सोयंग भव गड़न भंजन हार कालहीन कला संयुगत अकाल पुरख आदेश धर्म धाम सो परम रहत अभूत अलख अभेस अंग राग नारंग जा कह जात पात ना नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अन उस्तत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्ब भंजन आद रूप असूत अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्ब लायक सर्ब कायक सर्ब को प्रतपार सर्ब गंता सर्ब हंता सर्ब ते अनपेख सर्ब शास्त्र ना जान ही जिह रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जा कह नेत भाखत नित कोट सिमृत पुराण शास्त्र ना आव ही बहु चित मद भार छंद त्वै प्रसाद गुण गण उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनभव प्रकाश निस दिन अनास आ जान बाहु साहान साहु राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनभूत अंग अब अपंग गत मित अपार गुण गण उदार मुन गण प्रणाम निर्भय निकाम अत दुत प्रचंड मित गत अखंड आलिस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्बा भार नाड आन डांड बाड चाचरी छंद त्वै प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंग करियंग निरनामे अकामे पुजंग पर्यात छंद चत्तर चक्कर करता चत्तर चक्कर हरता चत्तर चक्कर दाने चत्तर चक्कर जाने चत्तर चक्कर वर्ती चत्तर चक्कर भरती चत्तर चक्कर पाले चत्तर चक्कर काले चत्तर चक्कर पासे चत्तर चक्कर वासे चत्तर चक्कर मानिया चत्तर चक्कर दानिया चाचरी छंद ना सत्तरै ना मित्रै ना भरमंग ना पितरै ना करमंग ना काय अजन्मंग अजाए ना चित्रै ना मित्रै परे है पवित्रै पृथिसै अधिसै अदृश्य अकृसै भगवती छंद त्वै प्रसाद कथते के आ छिज देसै के आ भिज भेसै के आ गंज करमै के आ भंज भरमै के आ भिज लोकै के आ दित सोकै के अवधूत बरनै के विभूत करनै के राजंग प्रभा है के धर्मंग तुजा है के आ सूक बरनै के सर्बा अपरनै के जगतंग कृति है के छत्रंग छत्री है के ब्रह्मंग स्वरूपै के अनभव अनुपै के आदि अदेव है के आप अपेव है के चित्रंग बेहीनै के एकै अधीनै के रोजी रजाकै रहीमै रिहाकै के पाक बेऐब हैं के गैबुल गैब हैं के अफबुल गुनाह हैं के साहान साह हैं के कारण कुनिंद हैं के रोजी देहांद हैं के राज करहीम हैं के कर्मंग करीम हैं के सर्बंग कली हैं के सर्बंग दली हैं के सर्बतर मान्य है
ਕਿਸ ਸਰਬੱਤਰ ਦਾਨਿਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਸਰਬੱਤਰ ਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਸਰਬੱਤਰ ਭਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਸਰਬੱਤਰ ਦੇਸਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਸਰਬੱਤਰ ਭੇਸਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਸਰਬੱਤਰ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਸਰਬੱਤਰ ਸਾਜਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਸਰਬੱਤਰ ਦੀਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਸਰਬੱਤਰ ਲੀਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਸਰਬੱਤਰ ਜਾ ਹੋ, ਕਿਸ ਸਰਬੱਤਰ ਭਾ ਹੋ, ਕਿਸ ਸਰਬੱਤਰ ਦੇਸਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਸਰਬੱਤਰ ਭੇਸਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਸਰਬੱਤਰ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਸਰਬੱਤਰ ਪਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਸਰਬੱਤਰ ਹੰਤਾ, ਕਿਸ ਸਰਬੱਤਰ ਗੰਤਾ, ਕਿਸ ਸਰਬੱਤਰ ਭੇਖੀ, ਕਿਸ ਸਰਬੱਤਰ ਭੇਖੀ, ਕਿਸ ਸਰਬੱਤਰ ਕਾਜਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਸਰਬੱਤਰ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਸਰਬੱਤਰ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਸ ਸਰਬੱਤਰ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਸ ਸਰਬੱਤਰ ਤਰਾਣ ਹੈ, ਕਿਸ ਸਰਬੱਤਰ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ, ਕਿਸ ਸਰਬੱਤਰ ਦੇਸਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਸਰਬੱਤਰ ਭੇਸਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਸਰਬੱਤਰ ਮਾਨਿਆ ਹੈ, ਸਦੈਵੰ ਪ੍ਰਧਾਨਿਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਸਰਬੱਤਰ ਜਾਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਸਰਬੱਤਰ ਥਾਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਸਰਬੱਤਰ ਭਾਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਸਰਬੱਤਰ ਮਾਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਸਰਬੱਤਰ ਇੰਦਰ ਹੈ, ਕਿਸ ਸਰਬੱਤਰ ਚੰਦਰਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਸਰਬੰ ਕਲੀਮਾ, ਕਿ ਪਰਮੰ ਫਹੀਮਾ, ਕਿ ਆਕਲ ਅਲਾਮੈ, ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਲਾਮੈ, ਕਿ ਹੁਸਨੁਲ ਵਜੂ ਹੈ, ਤਮਾਮੁਲ ਰੁਜੂ ਹੈ, ਹਮੇਸੁਲ ਸਲਾਮੈ, ਸਲੀਖਤ ਮੁਦਾਮੈ, ਗਨੀਮੁਲ ਸਿਕਸਤੈ, ਗਰੀਬੁਲ ਪਰਸਤੈ, ਗਨੀਮੁਲ ਸਿਕਸਤੈ, ਗਰੀਬੁਲ ਪਰਸਤੈ, ਬਿਲੰਦੁਲ ਮਕਾਨੈ, ਜਮੀਨੁਲ ਜਮਾਨੈ, ਤਮੀਜੁਲ ਤਮਾਮੈ, ਰੁਜੂਅਲ ਨਿਧਾਨੈ, ਹਰੀਫੁਲ ਅਜੀਮੈ, ਰਜਾਇਕ ਯਕੀਨੈ, ਅਨੇਕੁਲ ਤਰੰਗ ਹੈ, ਅਭੇਦ ਹੈ, ਅਭੰਗ ਹੈ, ਅਜੀਜੁਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ, ਗਨੀਮੁਲ ਖਿਰਾਜ ਹੈ, ਨਿਰੁਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਮੁਕਤ ਵਿਭੂਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੁਗਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ, ਸੁਜੁਗਤ ਸੁਧਾ ਹੈ, ਸਦੈਵੰ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਅਭੇਦੀ ਅਨੂਪ ਹੈ, ਸਮਸਤੋ ਪਰਾਜ ਹੈ, ਸਦਾ ਸਰਬ ਸਾਜ ਹੈ, ਸਮਸਤੁਲ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਸਦੈਵਲ ਅਕਾਮ ਹੈ, ਨਿਰਬਾਧ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਅਗਾਧ ਹੈ, ਅਨੂਪ ਹੈ, ਓਅੰਗ ਆਦ ਰੂਪੇ ਅਨਾਦ ਸਰੂਪੈ, ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ, ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਮੇ, ਤ੍ਰਿਵਰਗੰ ਤ੍ਰਿਬਾਧੇ, ਅਗੰਜੇ ਅਗਾਧੇ, ਸੁਭੰ ਸਰਬ ਭਾਗੇ, ਸੁਸਰਬਾ ਅਨੁਰਾਗੈ, ਤ੍ਰਿਭੁਗਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਅਛਿਜ ਹੈ, ਅਛੂਤ ਹੈ, ਕਿਨਰਕੰ ਪਰਨਾਸ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਥਿਉਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ, ਨਿਰੁਕਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ, ਸਦੈਵੰ ਸਦਾ ਹੈ, ਵਿਭੁਗਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਪ੍ਰਜੁਗਤ ਅਨੂਪ ਹੈ, ਨਿਰੁਕਤ ਸਦਾ ਹੈ, ਵਿਭੁਗਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ, ਅਨਉਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਪ੍ਰਜੁਗਤ ਅਨੂਪ ਹੈ, ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਅਭੰਗ ਹੈ, ਅਨੰਗ ਹੈ, ਅਭੇਖ ਹੈ, ਅਲੇਖ ਹੈ, ਅਭਰਮ ਹੈ, ਅਕਰਮ ਹੈ, ਅਨਾਦ ਹੈ, ਜੁਗਾਦ ਹੈ, ਅਜੈ ਹੈ, ਅਬੈ ਹੈ, ਅਭੂਤ ਹੈ, ਅਧੂਤ ਹੈ, ਅਨਾਸ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਹੈ, ਅਤੰਦ ਹੈ, ਅਬੰਧ ਹੈ, ਅਭਗਤ ਹੈ, ਬਿਰਕਤ ਹੈ, ਅਨਾਸ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਨਿਚਿੰਤ ਹੈ, ਸੁਨਿੰਤ ਹੈ, ਅਲੇਖ ਹੈ, ਅਦੇਖ ਹੈ, ਅਲੇਖ ਹੈ, ਅਭੇਖ ਹੈ, ਅਟਾਹ ਹੈ, ਅਗਾਹ ਹੈ, ਅਸੰਭ ਹੈ, ਅਗੰਭ ਹੈ, ਅਨੀਲ ਹੈ, ਅਨਾਦ ਹੈ, ਅਨਿਤ ਹੈ, ਸੁਨਿਤ ਹੈ, ਅਜਾਤ ਹੈ, ਅਜਾਦ ਹੈ, ਚਰਪਟ ਛੰਦ ਤਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਰਬੰ ਹੰਤਾ, ਸਰਬੰ ਗੰਤਾ, ਸਰਬੰ ਖਿਆਤਾ, ਸਰਬੰ ਗਿਆਤਾ, ਸਰਬੰ ਹਰਤਾ, ਸਰਬੰ ਕਰਤਾ, ਸਰਬੰ ਪ੍ਰਾਣੰ, ਸਰਬੰ ਤ੍ਰਾਣੰ, ਸਰਬੰ ਕਰਮੰ, ਸਰਬੰ ਧਰਮੰ, ਸਰਬੰ ਜੁਗਤਾ, ਸਰਬੰ ਮੁਕਤਾ, ਰਸਾਵਲ ਛੰਦ ਤਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਨਮੋ ਨਰਕ ਨਾਸੇ, ਸਦੈਵੰ ਪ੍ਰਕਾਸੇ, ਅਨੰਗੰ ਸਰੂਪੇ, ਅਭੰਗੰ ਬਿਭੂਤੇ, ਪਰਮਾਥੰ ਪਰਮਾਥੇ, ਸਦਾ ਸਰਬ ਸਾਥੇ, ਅਗਾਧ ਸਰੂਪੇ, ਨਿਰਬਾਧ ਬਿਭੂਤੇ, ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ, ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਮੇ, ਨਿਰਭੰਗੀ ਸਰੂਪੇ, ਸਰਬੰਗੀ ਅਨੂਪੇ, ਨਾ ਪੋਤਰੈ ਨਾ ਪੁੱਤਰੈ, ਨਾ ਸੱਤਰੈ ਨਾ ਮਿੱਤਰੈ, ਨਾ ਤਾਤੈ ਨਾ ਮਾਤੈ, ਨਾ ਜਾਤੈ ਨਾ ਪਾਤੈ, ਨਿਰਸਾਕੰ ਸਰੀਕ ਹੈ, ਅਮਿਤੋ ਅਮੀਕ ਹੈ, ਸਦੈਵੰ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ, ਅਜੈ ਹੈ, ਅਜਾ ਹੈ, ਭਗਵਤੀ ਛੰਦ ਤਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ,
के जाहर जहूर हैं के हाजर हजूर हैं हमेशुल सलाम हैं समस्तुल कलाम हैं के साहिब दिमाग हैं के हुसनल चराग हैं के कामल करीम हैं के राज करहीम हैं के रोजी देहांद हैं के राज करहिंद हैं करीमुल कमाल हैं के हुसनुल जमाल हैं के हुसनुल जमाल हैं गनीमुल खिराज हैं गरीबुल निवाज हैं हरीफुल सिकान हैं हिरासुल फिकान हैं कलंकं परनास हैं समस्तुल निवास हैं अगंजुल गनीम हैं रजायक रहीम हैं समस्तुल जुबा हैं के साहिब किरा हैं के नरकं परनास हैं बेहस्तुल निवास हैं के सरबुल गवान हैं हमेशुल रवान हैं तमामुल तमीज हैं समस्तुल अजीज हैं परंग परम ईस हैं समस्तुल अदीस हैं अदेशुल अलेख हैं हमेशुल अपेख हैं जमीनुल जमा हैं अमीकुल इमा हैं करीमुल कमाल हैं के जुरत जमाल हैं के अचलंग प्रकाश हैं के अमितो सुबास हैं के अजब स्वरूप हैं के अमितो बेपूत हैं के अमितो पसा हैं के आत्म प्रभा हैं के अचलंग अनंग हैं के अमितो अपंग हैं मद पार छंद त्वय प्रसाद मुन मन प्रणाम गुण गण मुदाम हर बर अगंज हर नर प्रपंज अन गण प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव अनास मुन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल थल मुदाम अन छिज अंग आसन अभंग उपमा अपार गत मित उदार जल थल अमंड दिस विस अभंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनास त्रित तर तुरास आ जान बाहु एकै सदाहु ओंकार आदि कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुरबर अकाल घर घर प्रणाम चित चरण नाम अन छिज गात आजिज ना बात अन झंज गात आजिज ना बात अन झंज गात अन रंज बात अन तुट भंडार अन थट अपार आडीठ धर्म अत ढीठ कर्म अन ब्रन अनंत दाता महंत हर बोल मना छंद त्वै प्रसाद करुणालय हैं अरकालय हैं खल खंडन हैं मह मंडन हैं खल खंडन हैं मह मंडन हैं जगतेश्वर हैं परमेश्वर हैं काल कारण हैं सर्ब उबारण हैं त्रित के तरण हैं जग के करण हैं मन मान्या हैं जग जान्या हैं सर्वंग पर हैं सर्वंग कर हैं सर्ब पास्या हैं सर्ब नास्या हैं करुणाकर हैं विश्वंग पर हैं सर्वेश्वर हैं जगतेश्वर हैं ब्रह्मंडस हैं खल खंडस हैं पर ते पर हैं करुणाकर हैं अजपा जप हैं अथपा थप हैं अकृता कृत हैं अमृता मृत हैं अमृता मृत हैं करुणा कृत हैं अकृता कृत हैं धरणी तृत हैं अमितेश्वर हैं परमेश्वर हैं अकृता कृत हैं अमृता मृत हैं अजबा कृत हैं अमृता मृत हैं नर नायक हैं खल कायक हैं बेसवंग पर हैं करुणालय हैं निरपनायक हैं सर्व पायक हैं भाव भंजन हैं अरगंजन हैं रिपतापन हैं जप जापन हैं अकलंकृत हैं सर्वाकृत हैं कर्ता कर हैं हरता हर हैं परमात्म हैं सर्व आत्म हैं आत्म बास हैं जस के जस हैं पुजंग प्रयात छंद नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे
नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संग ताम संग सांत रूपे नमो परम ततंग अततंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह करता नमो सांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग बेपुते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अक्षरी छंद अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी नारागे नारंगे नारूपे नारेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे पुजंग पर्यात छंद नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामंग बेपुते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग परनासी सुतर्मंग बेपुते सदा सचदानंद सतरंग परनासी करीमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब बिपुते गजायब गनीमे हरियंग करियंग करीमुल रहीमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र पुगते सोयंग पाव सुबंग सर्वदा सर्व जुगते दुकालंग परनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगंग बिपुते दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेपुते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पात साही दसवी तवै प्रसाद सुवैये सरावग सुध समूह सिदान के देख फिरयो घर जोग जति के सूर सुरार्दन सुध सुधादिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहयो मत को ना देखियत प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते एक रति बिन एक रति के माते मतांग जरे जर संग अनूप उतांग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन कौ जात निवारे भारी पुजान के भूप भली बिद नियावत सीस न जात बिचारे एते भय तो कहा भय भूपत अंत कौ नांगे ही पाए पधारे जीत फिरै सब देश दिसान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविख पवान के भूपत कौन गणै नहीं जात बिचारे श्री पत श्री भगवान भजे बिन अंत कौ अंत के धाम सिधारे श्री पत श्री भगवान भजे बिन अंत कौ अंत के धाम सिधारे तीर्थ नान दया दम दान सो संजम नेम अनेक बिसेखै वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेखै पौन आहार जति जत धार सबै सो विचार हजारक देखै श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक ना लेखै सुध सिपाह दुरंत दुबाह सो साज सनाह दुरजान दलैंगे भारी गुमान भरे मन मै कर पर्वत पंख हले ना हलैंगे तोर अरीन मरूर मवासन माते मतंगन मान मलैंगे श्री पत श्री भगवान कृपा बिन
त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार अभिचार है सार की धार पछैया तोरत देस मलिंद मुवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़न हार सो बातन ही चक चार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सुएक दिवैया दानव देव फनिंद निसाचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जाल मैं थाल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बहु पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरै जग सत्तर सभै अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजिंदर नरादप जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट इसनान गजादिक दान अनेक स्वंबर साज बरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सची पत अंत फसे जाम फास परेंगे जे नर श्री पत के प्रस हैं पग ते नर फेर ना देह तरेंगे कहा भयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहो बक ध्यान लगायो नात फिरियोलिये सात समुंदरन लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बिखियान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहो सुन लेहो सबै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज धरियो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो काहू लखियो हर अवाची दिशा मह काहू पछाह को सीस निवायो को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूर क्रिया उर्ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूर क्रिया उर्ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह है पातशाही दसवीं कब्यो बाच बेनती चाओ पई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूरन होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रत पारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो आप हाथ दै मोहे बचावहो सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दै करिया सब बैरन कौ आज संगरिया पूरन होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम है छाड़ कोई अवर ना त्याऊ जो बार चाहऊ सो तुम ते पाऊ सेवक सिख हमारे तारिया है चुन चुन सत्र हमारे मारिया है आप हाथ दै मुझे उबरिया मरण काल का त्रास निवरिया हुजो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुझ जू करिया हो रच्छा राख ले हो मोहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दास कंता काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमासा जवन काल जोगी शिव कियो बेदराज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जच्छन उपजायो आदि अंत एकै अवतारा सोई गुरु समझियहो हमारा
नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को साव गुण सुख दियो सतरन को पालमो बद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाना है घट घट के पट पट की जाना है जब उदकर्ख करा कर तारा प्रजा धरत तब देह अपारा जब आकर्ख कर तो हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह धार सब हूँ जेते बदन सृष्ट सब धारै आप अपनी बूझ उचारै तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निरिबकार निरलंभ आदि अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत भेदा जा को भेव न पावत बेदा ताकाउ कर पाहन अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव काउ कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह भेव आप आपुनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती तुमरा लखा न जाय पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एकै रूप अनूप सुरूपा रंक भयो राव कही भूपा अंडज जेरज सेतज कीनी उत भुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हुआ बैठा कहूं सिमट भयो संकर इकैठा सिगरी सृष्ट दिखाए अचम भव आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिखे उबार असिखे संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेच्छ करो रान काता जे अस तुज तव सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हुए मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिन के तुम संकट सब टारे जो काल को एक बार त्या है ताके काल निकट नह है रक्षा हुए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहारि हो ताके ताप तनक मह हरि हो रिद्ध सिद्ध कारमो सब होई दुष्ट छाह छुवै सकै ना कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा जिन नार नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दोख ते रहा खड़ग केत मैं सरण तिहारी आप हाथ दै लिहो उबारी सर्ब ठाउर मोह हो सहाई दुष्ट दोख ते लिहो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूरन सुबराता किल बिख सकल देह को हरता दुष्ट दुखियन को छाय करता श्री अस तुज जब भय दयाला पूरन करा ग्रंथ तत्काला मन बांछत फल पावै सोई दुख ना तिसै व्यापत कोई अडिल सुनै गुंग जो याहे सो रसना पावई सुनै मूड चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पाओ निकटना तिन नर के रहै हो जो याकी एक बार चाओ पई को कहै चाओ पई संबत सतरह सहस पनिजै अर्ध सहस फुन तीन कहिजै भादरव सुदे अष्टमी रविवारा तीर सतुद्रव ग्रंथ सुधारा सुवैया पाए गहे जाबते तुमरे तबते को आंख तरे नहीं आनेओ
राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक ना जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहियो सब तोहे बखान्यो दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ कै गहयो तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज आस गोविंद दास तुहार सगल द्वार कौ छाड़ कै गहयो तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज आस गोविंद दास तुहार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेति मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आइया शब्दोता गावहु हरि केरा मन जिनि वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनहु विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा घर ता तेरा सब किछ है जिस देहे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वस्या वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया कर सांत सुख मन आए वस्या जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान कीता गुरु विटा हो जिस दिया एह वडियाईया कह नानक सुनहो संत हो शब्द धरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सभागै शब्द वाजे कला जित घर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख हुआ तित घर अनहद वाजे साची लिवै बिन देह निमानी लिवै बज हो क्या करे वेचारिया तुद बाज समरथ कोय नाही कृपा कर बनवारिया एस नाओ होर थाओ नाही शब्द लाग सवारिया कह नानक लिवै बज हो क्या करे वेचारिया आनंद आनंद सब को कह आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारिया कर कृपा किल विख कटे ज्ञान अंजन सारिया अंदर हो जिन का मोह टुटा तिन का शब्द सचै सवारिया कह नानक एहो आनंद है आनंद गुर ते जानिया बाबा जिस तू देहे सोई जान पावै पावै ता सो जान देहे जिसनो होर क्या करहै वेचारिया एक भरम भूले फिरहै दह दिस एक नाम लाग सवारिया गुर प्रसादी मन भया निर्मल जिन्ना भाणा भावै कह नानक जिस देहे प्यारे सोई जान पावै आवहो संत प्यारे हो अकथ की करहै कहानी अकथ केरी कित दुवारै पाईऐ तन मन धन सब सौप गुर कौ हुकम मन्या पाईऐ हुकम मन्हो गुरु केरा गावहु सच्ची बाणी कहै नानक सुनहो संत हो कथहो अकथ कहानी
ए मन चंचला चतुराई किनै ना पाया, चतुराई ना पाया किनै तू सुन मन मेरिया। ए माया मोहनी जिन एत भरम भुलाया, माया ता मोहनी तिनै कीती जिन ठगौली पाईया, कुर्बान कीता तिसै विटहो जिन मोह मीठा लाया। कहै नानक मन चंचल चतुराई किनै ना पाया, ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले एहो कुटंब तू जे देखदा। चलै नाही तेरै नाले साथ तेरै, चलै नाही तिस नाल क्यों चित लाईऐ। ऐसा काम मूले ना कीचै जित अंत पछोताईऐ, सत गुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरै नाले। कहै नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले, अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया, अंतो ना पाया किनै तेरा। अपना आप तू जान हे जी जंत सब खेल तेरा, क्या को आख वखान ए आख है ता वेख है सब तू है जिन जगत उपाया। कहै नानक तू सदा अगम है तेरा अंत ना पाया, सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया। पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया, जी जंत सब तुद उपाए एक वेख परसन आया। लब लोभ अहंकार चुका सत गुरु भला पाया, कहै नानक जिसनो आप तुठा तिन अमृत गुर ते पाया। भगता की चाल निराली, चाला निराली भगता हकेरी, बिखम मार्ग चलना लब लोभ अहंकार तज तृष्णा, बहुत नाही बोलना खन्या हो तिखी वाल हुनकी। एत मार्ग जाना गुर प्रसादी जिनी आप तजया, हर वासना समानी कहै नानक चाल भगता जुग हो जुग निराली। ज्यो तू चलाए हे तिव चलहै सुवामी, ज्यो तू चलाए हे तिव चलहै सुवामी, होर क्या जाना गुण तेरे। जेव तू चलाए हे तिवै चलहै जिना मार्ग पाव हे, कर कृपा जिन नाम लाए हे से हर हर सदा त्याव हे। जिसनो कथा सुनाए हे अपनी से गुरद्वारै सुख पाव हे। कहै नानक सच्चे साहिब ज्यो पावै तिवै चलाव हे। एहो सोहिला सबद सुहावा, सबदो सुहावा सदा सोहिला, सत गुरु सुनाया एहो तिन कै मन वसिया। जिन तुरहो लिखिया आया एक फिर है कनेरे कर है गल्लां, गल्ली किनै ना पाया कहै नानक सबद सोहिला। सत गुरु सुनाया पवित होए से जना जिनी हर त्याया, हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया। पवित माता पिता कुटंब सहत स्यो, पवित संगत सबाइया कह दे पवित सुन दे पवित, से पवित जिनी मन वसाया। कहै नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया। करमी सहज ना उपजै विन सहजै सहसा ना जाए, नह जाए सहसा कितै संजम रहे कर्म कमाए। सहसै जियो मलीन है कित संजम धोता जाए, मन धोवहो शब्द लागहो हर स्यो रहो चित लाए। कहै नानक गुर प्रसादी सहज उपजै एह सहसा इव जाए। जिया हो मैले बाहर हो निर्मल, बाहर हो निर्मल जिया हो ता मैले, तिनी जन्म जुवै हारिया। एह तिसना वड्डा रोग लगा मरण मनहु विसारिया, वेदा मह नाम उत्तम सो सुन है नाही फिर है ज्यो बेतालिया। कहै नानक जिन सच तजया कूड़े लागे, तिनी जन्म जुवै हारिया।
जिया हो निर्मल, बाहर हो निर्मल, बाहर हो ता निर्मल, जिया हो निर्मल। सतगुर ते करनी कमानी, कूड़ के सोए पहुचै नाही, मनसा सच समानी। जन्म रतन जिने खटिया, भले सेवन जारे, कहे नानक जिन मन निर्मल, सदा रह है गुर नाले। जे को सिख गुरु सेती, सनमुख हुवै, हुवै ता सनमुख सिख कोई। जिया हो रह गुर नाले, गुर के चरण हिरदै ते आए, अंतर आत्मै समाले, आप छड सदा रह परनै, गुर बिन अवर न जाने कोए। कहे नानक सुनहु संतहु, सो सिख सनमुख हुए। जे को गुर ते वेमुख होवै, बिन सतगुर मुक्त ना पावै, पावै मुक्त ना होर थै कोई। पुछो हो बिबेकिया जाए, अनेक जूनी भरम आवै, बिन सतगुर मुक्त ना पाए, फिर मुक्त पाए लाग चरणी। सतगुरु शब्द सुनाए, कहे नानक विचार देखहु, बिन सतगुर मुक्त ना पाए। आवहो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावहो सच्ची बाणी, बाणी ता गावहो गुरु केरी, बाणिया सिर बाणी। जिन कौ नदर कर्म होवै, हिरदय तिना समाणी, पीवहो अमृत सदा रहो हर रंग, जपहो सारग पाणी। कहे नानक सदा गावहो, एह सच्ची बाणी, सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी। बाणी ता कच्ची सतगुरु बज हो, होर कच्ची बाणी, कह दे कच्चे सुन दे कच्चे, कच्ची आख वखाणी। हर हर नित कर है रसना, कहया कछु न जानी, चित जिन का हिर लया माया, बोलन पै रवाणी। कहे नानक सतगुरु बज हो, होर कच्ची बाणी, गुर का शब्द रतन है, हीरे जित जड़ाओ, शब्द रतन जित मन लागा, एहो हुआ समाओ। शब्द सेती मन मिलिया, सच्चा लाया पाओ, आपे हीरा रतन आपे, जिसनो दे बुझाए। कहे नानक शब्द रतन है, हीरा जित जड़ाओ, सेव सकत आप उपाय, कै करता आपे हुक्म वरताए, हुक्म वरताए आप वेखै, गुरमुख किसै बुझाए, तोड़े बंधन होवै मुक्त, शब्द मन वसाए। गुरमुख जिसनो आप करे सो होवै, एकस स्यो लिव लाए। कहै नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए, सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे, तत्तै सार ना जानी, तत्तै सार ना जानी, गुरु बज हो तत्तै सार ना जानी। तिहि गुणी संसार भ्रम सुता, सुत्या रैन विहानी, गुर किरपा ते से जन जागे, जिना हर मन वसिया, बोलह अमृत बाणी। कहै नानक सो तत पाए, जिसनो आन दिन हर लिव लागै, जागत रैन विहानी। माता के उदर मह, प्रतपाल करे सो क्यों मनहो विसारियै, मनहो क्यों विसारियै, ए वडदाता, जे अगन मह आहार पहुचावै, ओसनो केहो पोहे ना सकी। जिस नाओ अपनी लिव लावे, अपनी लिव आपे लाए, गुरमुख सदा संभालिया। कहे नानक ए वडदाता, सो क्यों मनहु विसारिया। जैसी अगन उदर मह, तैसी बाहर माया, माया अगन सब इको जेही, करता है खेल रचाया। जा तिस भाणा ता जम्मिया, परवार भला पाया, लिव छुड़की लगी तृष्णा, माया अमर वरताया। एह माया जित हर विसरै, मोह उपजै भाव दूजा लाया। कहे नानक गुर प्रसादी, जिना लिव लागी तिनी विचे माया पाया। हर आप अमुलक है, मुल ना पाया जाए, मुल ना पाया जाए, किसै विटहो
रहे लोक विल लाए। ऐसा सत गुर जे मिलै तिसनों सिर सौ पिया विच हो आप जाए। जिसदा जियो तिस मिल रहै हर वसै मन आए। हर आप अमुलक है भाग तिना के नानका जिन हर पलै पाए। हर रास मेरी मन वनजारा हर रास।

हर रस पाए पल्लै पिया हर रस बहुड़ ना तृष्णा लागै आए एहो हर रस करमी पाईऐ सतगुर मिलै जिस आए कहै नानक होर अन रस सब विसरे जा हर वसै मन आए ए शरीरा मेरिया हर तुम मह जोत रखी ता तू जग मह आया हर जोत रखी तुद विच ता तू जग मह आया हर आपे माता आपे पिता जिन जियो उपाय जगत दिखाया गुर प्रसादी बुझिया ता चलत हुआ चलत नदरी आया कहै नानक सृष्ट का मूल रचिया जोत राखी ता तू जग मह आया मन चाओ भया प्रभ आगम सुनिया हर मंगल गाओ सखी गृह मंदर बनिया हर गाओ मंगल नित सखिए सोग दुख ना व्यापए गुर चरण लागे दिन सभागे अपना पिर जापए अनहत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो कहै नानक प्रभ आप मिलिया करन कारण जोगो ए शरीरा मेरिया इस जग मह आए कै क्या तुद कर्म कमाया के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग मह आया जिन हार तेरा रचन रचिया सो हार मन नाम साया गुर प्रसादी हर मन वसिया पूर्ब लिखिया पाया कहै नानक एहो शरीर परवान होआ जिन सतगुर सिव चित लाया ए नित रहो मेरे हो हर तुम मह जोत धरी हर बिन अवर ना देखो कोई हर बिन अवर ना देखो कोई नदरी हर निहालिया एहो वेस संसार तुम देख दे एहो हर का रूप है हर रूप नदरी आया गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा हर एक है हर बिन अवर ना कोई कहै नानक एह नेत्र अंध से सतगुर मिलिया दिब दृष्ट होई ए सरवण हो मेरे हो साचै सुनने नो पठाए साचै सुनने नो पठाए शरीर लाए सुनहो सत बाणी जित सुनी मन तन हरिया हुआ रसना रस समाणी सच अलख वेडाणी ताकि गत कही ना जाए कहै नानक अमृत नाम सुनहो पवित्र हो वहो साचै सुनने नो पठाए हर जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया वजाया वाजा पाउन नौ द्वारे प्रगट किए दसवा गुप्त रखाया गुरद्वारे लाए भावनी इकना दसवा द्वार दिखाया तह अनेक रूप नाव नाव निद तिस दा अंत ना जाई पाया कहै नानक हर प्यारै जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया एहो साचा सोहिला साचै घर गावहो गावहो ता सोहिला घर साचै जिथै सदा सच त्याव हे सचो त्यावह जा तुद भावह गुरमुख जिना बुझाव हे एहो सच सबना का खसम है जिस बक्से सो जन पाव हे कहै नानक सच सोहिला सचै घर गाव हे अनद सुनहो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन भये सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया भार पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया भार पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे

सज्जन मैडया देई सेस उतार नैन महिंजे तरस दे कद पसी दीदार जे तू मित्र असाडड़ा एक पूरी ना वे छोड़ जियो महिंजा तव मोहया कद पसी जानी तोहे सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुबाए दर्शन परसया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसम दी नूर अरसहु कुरसहु चटिया तुद डिठे सच्चे पातिसा मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातिसा सिर साहां दैसाहु जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे साहु सतनाम वाहे गुरु साहिब जी सोरठ महला पंजवा जित पार ब्रह्म चित आया सो घर दइये वसाया जित पार ब्रह्म चित आया सो घर दइये वसाया सुख सागर गुर पाया ता सहसा सगल मिटाया हर के नाम की वड्याई आठ पहर गुण गाई गुर पूरे ते पाई रहा

बाबा सिंह जी अंतर्गत होके नाम सुनना करना जीओ दो मिनट वास्ते। जिन्हां गुरमुखां नूं शब्द सुनदे उन्हां ने शब्दां विच भी ध्यान देना जीओ, जिन्हां गुरमुखां नूं नाम नहीं सुनदा सास ग्रास समन विच ध्यान रखना जीओ, सवास अंदर नूं जांदा वाहे फील करना, सवास बाहर नूं आउंदा गुरु फील करना, अंतर्गत होके इवें करदे रहना जी दो तीन मिनट मगरों, फिर आपां रसना नाल जपांगे जीओ। कृपा करके नेत्र बंद रखने जीओ।

पौड़ी बिन सतगुर के ना पायो, बिन सतगुर के ना पाया। सतगुर विच आप रखियो उन कर प्रगट आख सुनाया। सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाये वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लईं ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होए सहाये अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आईए जिस डिठे सब दुख जाए तीग बहादुर सिमरिय कर नौ निद आवे ताए सब थाई होए सहाय दसवे पातशाह धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज सब थाई होए सहाय दसाही पातशाहियां दे प्रतख स्वरूप जुगो जुग अटल धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दे पाठ दर्शन दीदार जी का त्यांतर के बोलो जी पांच प्यारे चार साहिबजादे चाली मुक्ते

संगत प्यार सहित गुरु फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग, परम सन्मान योग पतत पावन दया सिंध कृपा निध रूहानियत ते पंडार गुरु गरीब निवाज पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर मन तां की ओट गिह जरे जिन तारे ब्रह्मांड खंड हर ताको नाम जपी जरे मन की मत त्याग हो हर जन हुक्म बोझ सुख पाई है रे जो प्रभु करै भला कर मानो सुख दुख ओ ही त्याई है रे कोट पतत उधार खिन मैं करते भार न लागै रे दीन दर्द दुख भंजन स्वामी जिस भावै तसै निवाजै रे सबको मात पिता प्रतपालक जी प्राण सुख सागर रे देंदे तोट नहीं तिस करते पूर रहे ओ रतनागर रे जाचक जाचै नाम तेरा स्वामी घट घट अंतर सोई रे नानक दास ता की सरनाई जाते बिरथा न कोई रे गरीब निवाज जुग जुग अटल सचे पातशाह आद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आद गुरु ग्रंथ साहिब जी दी छत्र छाया हेठ हजूरी अंदर बारगा अंदर सतगुरु जी दी साजी अते निवाजी होई गुरु प्यारी गुरु सवारी अति सत्कार योग साध संगत जी बहुत ही भावना दे सहत प्यार विच भिज के सतगुरां दे दरबार दियां हाजरियां भरियां ने गुरु सवारे गुरु के कीर्तनियां पासों अमृत बाणी दा कीर्तन सरवण कीता है बहुत ही प्यार विच भिज के कीर्तन कर रहे सन आप सरवण कर रहे सी इहे अरदास हां जी इहे अरदास केड़ी हमारी स्वामी ये साड़ी अरदास है हमारी तो भाव अपनी किदे अगे गुरु अगे विसर नाही सुख दाते बस इत्थे बोला वो दाता है और दाता भी किहो जा है जिन्नू तुसी बचन पढ़ दियो गुरा गुरा बिंदी नहीं लाउणी इत्थे गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना विसर ना ही सुख बोल जुड़ गए ना देखो आप सच साहब जी कहते गुरां ने कृपा कीती है गल समझा दती है वो सारे जीवां दा दाता है उहदा छिन मात्र भी नाम नहीं विसरना चाहीदा वो सुख देने वाला है क्योंकि सुख जेड़े ने वो केवल नाम दे विच ने नाम तो बिना सुख प्राप्त होया नहीं करदे यह अरदास एड़े तो भाव की है वो अंतर जामी है एड़े तो भाव की जिहदे कोल अरदास करदा है ना वो बिन बोलियां तो भी जानदा है पर जिन्ना क सतगुरां ने बल बख्शिया है कबीर केसो केसो कूकी है ना सोई है आसार रात दिवस के कूकने कबो के सुने पुकार बेशक वो जानदा है पर तू पुकार कर ओहदे अगे अरदास कर वो अंतर

मन चौ पया बैरागिया बलराम जियो संत जना हर मेल हर पाया वडभागिया बलराम जियो निर्मल हर पाया हर गुण गाया मुख बोली हर बाणी संत जना वडभागी पाया हर कथिए अकथ कहानी हिरदय हर हर हर तुन उपजे हर जपिए मस्तक भाग जियो जन नानक बोलै तीजी लावै हर उपजै मन बैराग जियो।

हर प्रभ ठाकुर काज रचाया, तन हिरदय नाम विगासी। जन नानक बोलै चौथी लावै, हर पाया प्रभ अवनासी। हर प्रभ ठाकुर काज रचाया,

तुद विण सिद्धि किन ना पाई, कर्म मिले नाही ठाक रहाई, आखण वाला क्या बेचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा,

दास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास, धन धन सत संगत जित हर रस पाया।

तेरी बरिया, अवर काज तेरे कितै ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम, सरंजाम लाग भव जल तरन कै, जन्म बृथा जात रंग माया कै, रहाओ जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा

अध कियो, काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, कीटी ते कुंचर सथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछान, घाट घाट के पट पट की जान, जब उद करख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा, जब आ करख करत हो कबहू, तुम मैं मिलत देह धर सबहू, जेते बदन सृष्ट सब तारै।

तिन मात की जय हर बांझा, तिन सुनी देह फिर है बिन नावे, ओए खप खप मुए करांजा। मेरे मन जाप राम नाम हर माजा, हर